0: قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। Inspire FM रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर FM के साथ।
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: होशियार रहें। कुछ लोगों ने फ्रॉड का एक नया तरीका अपना लिया है। वो आपके घरों पर इंस्पायर FM और दिगर चैरिटीज के नाम पर चंदा मांगने आते हैं। इनको कुछ भी देने से पहले इनका आईडी कार्ड या फिर इस चैरिटी से राब्ता करके तसल्ली कर लें कि कहीं आप गलत शख्स को रकम तो नहीं दे रहे। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: कम्युनिटी की आवाज है, बस एक ही आवाज है। आप समात फरमा रहे हैं इंस्पायर एफएम 105.1।
1: दिस इज इंस्पायर ऑन 105.1 FM।
2: आई हैव

0: quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
1: If there's someone ill or you are ill from your family, ask Allah subhanahu wa ta'ala. If you have a problem in your life, ask Allah azza wa jal.
2: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
3: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
4: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
5: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.1.

0: want to sell a 10-foot ladder.
1: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
2: For details, click on inspirefm.org, then advertise. From the studios of Inspire FM, the time is now 7:30.
3: इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है, सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, आयात की झुरमट में तेरे नाम की मसनत, लफ्जों की अंगूठी में नगीना सा जुड़ा है, खुर्शीद तेरी राह में बटकता हुआ जुगनू, महताबे तेरा रजे रेजा नक्शे कफे।

इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेजा नक्शे कफे पा है। वल्लैल तेरे साये गेसु का तराशा, वल असर तेरी नीम नगाही की अदा है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है। रग रग ने समेटी है तेरे नाम की फरियाद, जब जब भी परेशान मुझे दुनिया ने किया है।

इल्हाम की रिमझिम, कहीं बख्शिश की कटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने की फजा है। सांसों में महकती हैं मनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है। खालक ने कसम खाई है उस शहरे अमा की, जिस शहर की गलियों एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्शे कदम चूम लिया था। अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है, सूरज को उबरने नहीं देता तेरा हबशी, हजर को अबूजर तेरी बख्शिश ने किया है।

बाबा जरा शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो, अभी मुझको नहीं करना एतराफ़े शिकस्त तुमसे, अभी मुझको नहीं करना है एतराफ़े शिकस्त तुमसे, मैं सब तस्लीम कर लूंगा, ये चर्चा आम होने दो, मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर भी बिक नहीं सकता।

अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। अभी मुझको नहीं करना है इतराफ़े शिकस्त तुमसे दो, मेरी हस्ती नहीं अनमोल फिर भी बिक नहीं सकता, वफाएं बेच लेना बस जरा नैलाम होने दो, नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे, नए आगाज में ही हौसला क्यों छोड़ बैठे हो, तुम सब कुछ जीत जाओगे, जरा अंजाम होने दो।

क्या खूब लिखा है किसी ने, बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ होगी न मजाक मेरा होगा। गरूर न कर शाहे शरीर का, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। जिंदगी भर ब्रांडेड ब्रांडेड करने वालों, याद रखना कफन का कोई ब्रांड नहीं होता।

हरफ गलत न था, मुझे समझा गया गलत, लिखा गया गलत, कभी बोला गया गलत। मैं भी गलत न था, मेरी बातें गलत न थी, मुझको मेरे कलाम को जांचा गया गलत। मीजान ठीक था, पलड़े दुरुस्त थे, लेकिन ये कौन देखता है कि तोला गया गलत। मुझ में नहीं थे ऐब, कसौटी में ऐब थे, मेरा था या कसूर के परखा गया गलत। तूफान के बाद पहले तब को है ये फिक्र, साहिल का था कसूर के दरिया गया गलत। अफराद हैं गलत या गलत हैं तसव्वुरात, ये इस माशरे को ढाला गया गलत।

मोहब्बत की तमन्ना है तो फिर वो वसफ पैदा कर। जहां से इश्क चलता है वहां तक नाम पैदा कर। अगर सच है मेरे इश्क में तो ऐ बनी आदम नगाहे इश्क पैदा कर, जमाले जर्फ पैदा कर। मैं तुझको तुझसे ज्यादा चाहूंगा मगर शर्त ये है कि मैं कि अपने अंदर मेरी जुस्तजू तो पैदा कर। अगर न बदलूं तेरी खातर हर चीज तो कहना तू अपने आप में पहले अंदाजे वफा तो पैदा कर।

हमारा सारा पस मंजर, हमारा सारा मंजर इंसानों से है। गौर किया जाए तो कोई इंसान इंसानों की वाबस्तगी के बगैर रह नहीं सकता। मसलन मेरे पास सिर्फ आंखें हैं, नजर है, लेकिन मेरा मंजर इंसानों के चेहरे से बना है। अगर मंजर ना हो तो नजर किस काम की। इसी तरह मेरी समात मोहताज है इंसानों की आवाज की। मेरे मजाफात, मेरे इर्द गिर्द बोलने वाले इंसानों का हजूम ना हो तो मेरे कान बेकार हो जाएं। अल्लाह ताला ने इंसान को बयान अता फरमाया, ये बड़े गौर का मकाम है कि बयान सुनने वाला ना हो तो बयान क्या बयान होगा। मेरी जुबान मोहताज है सुनने वाले कानों की, मेरा दिल मोहताज है इंसान के चेहरे की मोहब्बत का। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात सब इंसानों से वाबस्ता है। मुझे रहनुमाई चाहिए किसी इंसान के जरिए अल्लाह की मंजिलों तक पहुंचाने वाला अल्लाह का बंदा ही होगा। मैं नेकी, बदी, गुनाह, सवाब, खुशी और गम जो कुछ भी हासिल करूंगा इंसान के जरिए। मेरी जिंदगी इंसानों के जरिए से गुजरेगी। हमें बात समझ में नहीं आती है मेरी प्यास बुझाने वाले पानी कितने हाथों की मेहनत का नतीजा है। हमारे पांव के नीचे जो सड़क है, इसके बनने में कितने साल और कितने इंसानों के पसीने लगे हुए हैं। आंख खोल के चले तो इंसान को इंसानों के एहसानात नजर आएंगे। इन इंसानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसने इंसान का शुक्रिया अदा ना किया उसने खुदा का क्या शुक्रिया अदा करना है। जिस इंसान ने मां बाप को परवरिश करते हुए देखा और उन्हें ना माना, उसने खुदा को देखे बगैर क्या मानना है। अल्लाह ताला इंसानों ही की दुनिया में अपने जलवे दिखाता है। इंसान खामोशी से दुआ मांगता है, अल्लाह खामोश दुआओं को सुनता है, दिल में उठने वाले ख्यालात को सुनता है और फिर उन्हें मंजूर फरमाता है। अल्लाह के जलवे इंसानों के रूप में हर हर जगह नजर आ सकते हैं। ये जहां अल्लाह की निशानियों से बड़ा पड़ा है। अल्लाह के बंदू ने अल्लाह की याद के चिराग जला दिए और इन चिरागों की रोशनी में आने वाले इंसानों को नई मंजिलों पर चलने की तौफीक दी। यहां एक बात और बताता चलूं, कभी कभी दिल में उठने वाले जो ख्यालात होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और कभी बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह उन पर गिरफ्त नहीं फरमाते जब तक वो अमल पैरा ना हो जाए। अल्लाह सुबहान व तआला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो अल्लाह के बंदू ने अल्लाह की याद के चिराग जला दिए, वो सुनता है, वो कबूल फरमाता है और इन चिरागों की रोशनी में आने वाले इंसानों को नई मंजिलों पर चलने की तौफीक दी। अल्लाह की तलाश बहुत आसान है, वो इंसानी शारक से करीब है, बहुत करीब, लेकिन इस तक रसाई हासिल करना इसलिए मुश्किल है कि इंसान इंसान है और अल्लाह अल्लाह। हादस कदीम नहीं हो सकता और कदीम हादस नहीं हो सकता, बस फर्क यही है कि हम साजिद हैं वो मस्जूद। हम पैदा होते हैं और मर जाते हैं और वो पैदाइश और मौत से आजाद हय्यु कयूम है। वो हर आगाज से पहले मौजूद था और हर अंजाम के बाद मौजूद रहेगा। वो इतना करीब है लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। जिस तरह हम अपनी बेनाई को खुद नहीं देख सकते लेकिन बेनाई हमारे करीब रहती है, हमारी रूह हमारे पास है लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। हमारी जात हर वक्त हमारे साथ है लेकिन अपनी जात का दीदार मुमकिन नहीं। समंदर में रहने वाली मछली समंदर को देख नहीं सकती, पानी से निकले बगैर वो कैसे देख सकेगी, और अगर पानी से निकलेगी
तो समंदर नजर नहीं आता, और पानी से निकले तो मछली मछली नहीं रहती। बस अल्लाह के जलवे, अल्लाह के जलवे पास हैं, साथ हैं, लेकिन क्या है और कहां है सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अल्लाह की मोहब्बत की इंतहाई अमली शक्ल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में है। अरशाद बारी ताला है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम लोगों को अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इताअत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। यानी अल्लाह की मोहब्बत इंसान के हवाले के बगैर मंजूर ही नहीं हो सकती। हम अल्लाह से मोहब्बत करें और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफी करें तो यह मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। राब्ते के लिए इंसान और इंसान कामल का होना शर्त अव्वल है, और उन इंसान कामल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी अल्लाह की याद में और इंसानों की खिदमत में गुजरी। इरफान इलाही के लिए मकामात जो है, मकाम इंसानियत को पहचानना जरूरी है। इंसानों से मोहब्बत करो, यही अल्लाह से मोहब्बत का एक पहलू है। अल्लाह की मंजिल के सफर पर इंसानों के डेरे हैं, यह रास्ता इंसानों से गुजरता है। अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह के नाम पर निसार होने वाले, अल्लाह की राह में शहीद होने वाले, अल्लाह की याद में बेखबर होने वाले सब अल्लाह के मज़ाहिर हैं। इन मकामात से गुजरे बगैर तौहीद का सफर मुमकिन नहीं। जमीन पर रहने वालों का ख्याल रखो, आसमान वाला तुम्हारा ख्याल रखेगा। कहते हैं ना, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोते हो, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे। वो कहते हैं कर बला और हो बला, किसी के साथ नेकी करेंगे, किसी के साथ अखलाक से पेश आएंगे, सिला रहमी करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन आपकी भी मदद की जाएगी। जमीन पर रहने वालों का ख्याल रखिए, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा, आसमान वाला आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के नाम पर ही बाज़ औक़ात अल्लाह के बंदों पर जुल्म हुआ। इस बात का ख्याल रखा जाए कि इंसानों को तंग न किया जाए। इंसान के जरिए ही से मंजिलें हासिल होती हैं। वाहदत के जलवे कसरत में पिन्हा हैं, लेकिन इसके समझने के लिए एहतियात और उस्ताद कामल की जरूरत है। मैं सोचता हूं बहुत जिंदगी के बारे में, ये जिंदगी भी मुझे सोच कर न रह जाए। सामीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम में किसी भी किस्म की गलती पर माजरत खा हूं, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इंसान हूं, गलती हो सकती है और होती है। अल्लाह हमें माफ फरमाए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह बफजल खुदा। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। प्रोग्राम में ये प्यारा सा कलाम आपको ब्रेक के उस पार ले जाएगा, और उसके बाद जो इंस्पायर एफएम की दीगर नशरियात हैं वो जारी और सारी रहेंगी। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

को एक साथ बैलेंस करके हम का लफ्ज इस्तेमाल किया। अर रहमान में तीन बातें थी और रहीम में दो बातें थी, उन दोनों को इकट्ठा करके उसको बैलेंस किया गया। इसी तरह दुनिया की बात की गई शुरू में रब्बिल आलमीन तक, फिर उसके बाद आखिरत की बात आ गई मालिकी यौमिद्दीन। इसी तरह शुरू की आयात में फ़र्द के बारे में बात हो रही थी और आखिरी आयात में आप देखें जमा इस्तेमाल हो रही है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम इहदीना नअबुदु अलमग़दूबी अलैहिम जमा अद्दालीन जमा, माशरे की बात हो रही है। तो एक बैलेंस आ गया फ़र्द के और माशरे के दरमियान। इसी तरह इबादत करना और मदद तलब करना, दोनों के दरमियान एक बैलेंस। हम अल्लाह का हक अदा करें और अल्लाह हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करें, राइट। फिर आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत, इससे क्या मुराद है मैं अभी बताता हूँ आपको। अल्लाह ताला ने हमें, एक तो हमने पहले कह दिया सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दें, ये अल्लाह ताला की तरफ से आ सकता है, लेकिन उस हिदायत में एक ज़मीनी पहलू भी क्या है, माजी की तरफ तारीख में देखना है किन लोगों पर अल्लाह ताला ने इनाम किया और कौन से लोग हैं जो गज़ब के मुस्तहिक हुए, राइट। तो आसमानी हिदायत और ज़मीनी हिदायत। इसी तरह हिदायत की वजाहत, एक तो है इनाम, दूसरी तरफ है इन लोग ऐसे बुरे लोगों की तरफ ना हमें ले जाना, हमें इस रास्ते से बचा लेना, बैलेंस बिटवीन मुस्बत और मनफी ना दोनों के दरमियान। अच्छा, अब पहली बात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तीन आयात। इन तीन आयात को मैं कहता हूँ इल्म, इन तीन आयात को मैं क्या कह रहा हूँ, इल्म। क्यों, इसमें आपको किसका इल्म हुआ, अल्लाह ताला का इल्म हुआ इसमें। फिर आप कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, हम अब इबादत करने को तैयार हैं, हम अब इबादत करने को तैयार हैं, हम अब मदद मांगते हैं, हमें हिदायत दें। ये क्या है, अमल है, अब आप अमल करने को तैयार हो। पहला हिस्सा था इल्म, दूसरा हिस्सा क्या है, अमल। अच्छा, अब जब कहा उनका रास्ता जो जिन पर आपने इनाम किया, उन लोगों के पास क्या था, इल्म और अमल दोनों। पहले बात समझ लें, बात शुरू कहाँ हुई थी, इल्म से, दूसरी बात क्या हो रही थी, अमल। फिर जिस ग्रोह की बात हो रही उसके पास क्या था, इल्म और अमल। उसके बाद अलमग़दूबी अलैहिम, उनके पास क्या है, एक्चुअली उनके पास इल्म है बगैर अमल के, और अब बालीन के पास है इल्म बगैर अमल के। इल्म, अमल, अमल और इल्म, इल्म बगैर अमल, अमल बगैर इल्म। अजीब अजीब बैलेंस है इस पूरी सूरत में। अच्छा, उसके बाद ये इसको समझने के लिए ज़रा दिमाग लड़ाना पड़ेगा आपको। इसम और फेल की बात मैं कई दफ़ा कर चुका हूँ, नहीं ये क्योंकि मैं लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट हूँ ना, ये मेरे नज़दीक कुरान के बहुत बड़े अजायब में से है, बहुत ही बड़े अजायब में से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मेरे साथ सब्र करना, लेकिन ये बात अगर समझ में आ गई, कुरान के मेरे नज़दीक एक मौजज़ात में से है ये। इसम ऐसा होता है जिसमें ना माजी ना हाल ना मुस्तकबिल, ये बात पहले कही थी कि नहीं, ओके। इसम से बनता है जुमला इस्मिया, अरबी में कहते हैं जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया के अंदर किस चीज़ की तरफ इशारा होता है, ऐसी चीज़ जिसका ना हाल हो ना माजी हो ना मुस्तकबिल हो, उसमें उसकी तरफ कुछ इशारा होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ फ़ेल है, फ़ेल में क्या होता है, माजी हाल और मुस्तकबिल, उससे बनता है क्या, जुमला, क्या जुमला फ़ेलिया। वो एक पूरी ग्रामर का लेसन हो जाएगा, लेकिन आप बुनियादी बात समझ लें, जुमला इस्मिया में असल अहमियत इसम की होती है और जुमला फ़ेलिया में असल अहमियत फ़ेल की होती है, ठीक है, ओके। अब एक और बात समझ लें इस्मिया और फ़ेलिया के बारे में। आम तौर पर जुमला फ़ेलिया शुरू होता है फ़ेल से और जुमला इस्मिया शुरू होता है इसम से। अच्छा, इसम में क्या होता है, माजी हाल और मुस्तकबिल या हमेशगी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, तीन आयात, ये एक जुमला है। आयात तो तीन है लेकिन जुमले कितने हैं, एक, और ये जुमला इस्मिया है।